0: इसका खाने को रहता खाता है उन्होंने ऐसा नहीं ये हमारे घर में तो नहीं दिए तो खाते गए
1: टीवी तो घर को खाने पड़ता हमें
2: सही भयो सित जंक फुडमा चिनी नुन र अस्वस्थ चिजहरू धेरै हुन्छ यसमा भिटामिन खनिज फाइबर र प्रोटिन पर्याप्त नहुने भएका कारण शरीरलाई आवश्यक पोषण

संपादन करने की आवश्यकता होती है। तो तीन परिस्थितियां होती हैं, और परिवार या परिवार को चाहिए प्रोसेस के अंतर्गत इन्हें निर्णय लेना होता है, और उत्तर देने में निर्णय लेना होता है।

0: जस्तै चौकीदारहरूलाई कतै कतिकाले नै चौकीदारी गाउँ करिबै मैले स्याप्ने खाएको हुन्छ चौकीदार भइदिन परिवार बर्बाद भर्वाले अपने परिवार में अपने उपाय कत्र जाने
1: पहले हम तो कहा था अगर मैं तीन भाई रही
0: बुद्ध के बेला में बाबन के बेला में
1: बाबन के बेला में तो बाबन के बेला में तीन भाई है बाबन के बेला में छोटे छोटे हुए कि नहीं भाई छोटे छोटे हुए कि नहीं बाबा फिर अकेले गए कि
2: Thank you.

समुदाय का मौलिक संस्कृति परंपरा व सामूहिक एकता को प्रतीक मान लेना सख्या नाथ केवल मनोरंजन का माध्यम कदमी को ये पुस्तकों से हस्तांतरण विधेयक सांस्कृतिक परंपरा हो तर पांच पुस्तकों का अभ्यास व संरक्षण प्रतिगत शासकों की प्रक्रिया

0: समर्थ होकर सब बाधिता
1: अपना मुर्गी पत्र योजना बना रखी है मुर्गी पत्र के अगर अनुसार का बाधिता
0: प्रोपाइटर कृष्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक भास्कर दिया

0: मोबाइल है तो एक हिसाब से सबको पसंद है जो कोई यहाँ ऐसा था कि जो रास्ते यहाँ सिटी तक में रास्ता नहीं है यह फिल्म को बहुत बढ़िया चीज है बहुत
1: प्रकार रेडियो टूटा है।

0: शरीर बात
1: दुर्घटना भर भाटिए को दाँत तथा मुक्त हड्डी को उपचार
0: मुक्त तथा गाला में मास बनाने को उपचार सेवा
1: आदि पुलिस में भर्ती हुए को कॉस्मेटिक उपचार सेवा।

हमें दशरथ साथ में राज्य से जुड़ गया थी और अगर हमारे सहयोग के लिए तैयारी का आश्वासन होगा हाजिर न्यायाधीश और लखनऊ कार्यकारी समावेश रेडियो सबसे आवाज।

0: के समय का साक्षी के धेरै सुविधा गरेछ।
1: हो त, दुध बेच्ने पनि सम्झनु सारा डेरी एन्ड पिस्टर

0: सकता है, वही फिर दूसरा बड़का क्षेत्र में पढ़ना पानी पढ़ना वो पढ़ना उसे कहा सारा पाटा जान का खबर कई आप मशीन क्षेत्र के निर्माण जो कर रहे कितना कर लो खुद देख पढ़ना कर रहा अशीन परिजीवी का संक्रमण से पशु से उपाय होकर कसिन कसी को बचाई से गई गई का पशु सेवा केंद्र तो यात्रा का पशु प्राप्ति कृषि सहायक टका से पुसल बाटी
1: जय प्रभा।

0: Dios está ahí con su palabra, la calma, porque su asiento no se lo va a pedir.
1: Azul, आप प्रत्येक किसी क्षेत्र का लाभ समान लेना चाहती और घर में आपके पास होने वाला उस प्रति में सप्लाश में इंडियन इटालियन खान पर कार्य पर साइंस और इंडियन मिलिटरल ऑनलाइन मिल राइस मिल सारा मशीन हार्वेस्टर सात सरकार लगाए उस प्रति में दान अपने आप एक मशीन परिणाम का स्थान जाएगा खेती किसानी का पास का पूरे समान उपलब्ध होगा उसे हिफाज बिगड़ से पूरे किसी का मशीन फिर किसी क्षेत्र में होना चाहिए खबर क्रम से प्रधानमंत्री को बना दिया

0: 40% की वृद्धि नियमित स्वास्थ्य जांच करो।
1: चीनी पदार्थ मांसा मासु कम खाओ। खाना में शाक और फल फूल खाओ।
0: मद्यपान और धूम्रपान सेवन न करो।
1: स्वस्थ रहो, सुखमय जीवन जीओ।
2: रेडियो प्रभाला एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश।
1: तिम्रा प्रश्न, तिम्रा भावना अनि तिम्रा अनुभव अब मित्रता, शरीर सम्बन्ध, सुरक्षा आफ्नो निर्णयका कुरा बुझौ, सुनौ अनि खुलेर कुरा गरौ। खुलेर सुनौ, खुलेर सुनाऊ।
3: बीबीसी विद्याक्षरको सहयोगमा रेडियो चुनपारा र रेडियो गुरुबाबाको

0: अथवा धर्म थापा 95.5% मत प्राप्त गर्नबाट 5.35% प्राइवेट 0.67% मत मनोनिता खड्का खड्कीले 6209 भेट अन्तर्गतबाट जब निर्वाचित सभापति थापा पार्टी मुख्यालयमा समर्थन गर्थे नेपाली काङ्ग्रेसका रूपान्तरका प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको खोज गर्नबाट उहाँ पनि व्यक्तिगत विजयदेखि परिवर्तनका पक्षमा ठानिँदा हजारौं कार्यकर्ता र नागरिकका विश्वासका जितका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। राष्ट्रीय समाचार विकल्प हमारे संदेश का समय उदय लगा था। हमारे संदेश उदय नाशिक के लिए मुख्यमंत्री संदेश राष्ट्रीय में किसान उत्पन्न पर संख्या से दिया वितरण कर दिया तो वहां कर मंडी महिला को मिल तो धान संख्या जला लोग कपड़ को किसान चिंतित ठाकुर समुदाय कर टिकल बाका टिकटी एक बजे वही कपाई मारी का केंद्र सदस्य में 13 जना मनोनीत कांग्रेस सभापति में पवन कुमार थापा विजयी
1: जय रास्ता रहिएगा।

0: साइड पर हम उसी कार्यालय प्रशांत विद्यालय वरीपरि जनपुर के हुए गतिविधि को निगरानी कर हम सारा प्रयास से बाल बालिका को स्वास्थ्य सुरक्षित बनाना
1: सकता
0: इंटरनेशनल नेपाल राष्ट्रीय
2: सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन
0: तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनले काठमाडौँ

ఈ డైమండ్ నష్ట హాయిక నాగరికత పరమైన हमको नागरिकता तपाईँले होला तपाईँले आठ भर्नुपर्ने फारम चाहिँ के छ त नुवाकोट जिल्लाका सिडिओ शम्भु प्रसाद

0: कभी तुम मुझे पाने पड़ेगी।
1: सचिन ने बताया तुम्हारे दूध खेती मलाड़ी को 15 दिन में दूध को पैसा पाया नहीं
0: सकिया।
1: खेती मलाई कहाँ बताई किसान का लागि चाहिने धेरै थियो एउटै ठाउँमा। पहिलो कुरा त दूध सञ्चालन गरेर उत्कृष्ट मूल्य प्रदान गर्ने, 15 दिनमै दुधको पैसा भुक्तानी हुने, दुध पनिर दही क्रिम छुर्पी आइसक्रिम खुवा लगायतका दुध दही सामग्री बिक्री हुन्छ, अनि पशुको दाना माछाको दाना औषधि प्लान चक्कर विषादी बिउ बिजन मर्खा तथा कृषि औजार सामग्री उपलब्ध छ।
0: हाम्रो गाई पनि सिकिरहेको भयो भने नि

0: सब जानकारीका लागि कानुलाल चौधरी अठानब्बे जीरो त्रिपन्न उनासी पचहत्तर र अन्ठानब्बे चालिस र चालिस पचहत्तरी पच्चिस
1: आई डिड नॉट फिक्स द बिल.